0: हिंदुस्तान का दे रहा तू।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: ना ना ना ना ना ना गोरी छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गोरी छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू
1: ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
1: प्यार का लड्डू,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना
1: प्यार,
2: सोना
1: प्यार।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान थाना। उनकी एक विशेषता बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से बड़े महान दान

मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

Stichting Abhiyan. Stichting Swadesh और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन औखुस्त दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आपके लिए नगमों की सौगात लेकर आई हूँ, कुछ सुनी कुछ अनसुनी नगमे। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम किसी से नफरत करके या किसी का बुरा सोच के शायद अपनी झूठी आना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन मानिए, हमारे अंदर का इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटें। आप हमेशा पुरसुकून रहेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता।

इतनी शक्ति हमें दे न दाता। कुलदीप सिंह की मौसिकी थी और अभिलाष का लिखा तर्ज था। इसी रूहानियत अंदाज में नाथ शरीफ पेश है, तलत महमूद की मखमली आवाज़ में।

फरिश्तों ने नगमे मुसर्रत के गाए। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने अक्सर मजहबी और भक्ति संगीत से शुरू करते हैं, प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं। हमने गजल शौकीन के वास्ते गजलें चुने हैं, उम्मीद है आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, फिर से तेरी महफिल में, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ। अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस बस अल्फाज नए लाया हूँ। कभी शाख सब्ज़ो बर्ग पर, कभी गुंचो गुलोहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ।

दिल छू लेने वाले गज़ल पेश थी, श्री जगजीत सिंह की आवाज़ थी, कलाम था शायर अयाज जंसवी का। उसकी आवाज़ सुन लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को, देखो तो सही, देखो तो सही मेरे दर्द का इलाज पर असर होगा या नहीं।

अनमोल नगमा पेश था आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। बेखबर हो गए हैं कुछ लोग हमसे, हमारी जरूरत अब महसूस नहीं करते। कभी कभी बहुत बातें किया करते थे हमसे, अब खैरियत तक मालूम नहीं करते।

फिल्म आनंद मिश्र ये गीत पेश था और ये फिल्म 1971 में रिलीज हुआ था जिसमें राजेश खन्ना का अहम किरदार था। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की आवाजों में ये जुगल गीत।

सुर और मेरे गीत फिल्म गूंज उठे शहनामे से लिया है ये गीत और संगीत से सवारे थे संगीतकार वसंत देसाई। अगला गीत सुनवाते हैं आवाजें है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

राहुल देव बर्मन का संगीत रचना और शायर गुलजार का गीत रचना में पेश था ये दो गाना। अब हम आपको हेमंत कुमार से ये नगमा सुनवाते हैं।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार एन दत्ता की मौसिकी थी, नगमकार था साहिर लुधियानवी। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का जीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा।

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से एक बार फिर आदाब अर्ज। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने फिल्म मुगले आजम के बारे में इतला किया था। फिल्म मुगले आजम कब, कैसे और किसने बनाई है इसके बारे में बातें की थी। फिल्म मुगले आजम मुगल जमाने की शाही खानदान अकबर की कहानी है।

तो जैसे मैंने कहा, फिल्म मुगले आजम मुगल जमाने की शाही खानदान अकबर की कहानी है। 16वीं सदी की तारीखी वाकयात है, हिस्टोरीज फरहाल है। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा सा शहंशाह अकबर के बारे में कुछ बयां करूंगी। अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1524 में हुई थी। इंडिया के राजा महाराजाओं में अकबर सबसे मशहूर था। हिंदू और मुस्लिम को एक नज़र से देखता था। शहंशाह अकबर के कई बीवियां और कई बच्चे थे। उनके कितने बच्चे छोटी ही उम्र में गुजर जाते थे। शहजादा सलीम महारानी जोधाबाई का बेटा था। सलीम का एक भाई और था मुराद, लेकिन वो हमेशा नशे में रहता था और नशे की सबब से उनकी मौत हो जाता है। पिछले प्रोग्राम में मैं बतलाई थी कि अकबर के कई महलों था। दिल्ली के लाल किला उन्हीं जमाने का है और आगरा से पहले एक छोटा सा शहर है फतेहपुर सिकरी, जहां भी अकबर का महल था। महल चारों तरफ से बना था और बीच में मैदान था जिस पर एक मंच बना हुआ था। हर शाम को शास्त्रीय संगीत होता था। अकबर को तानसेन के संगीत बहुत पसंद था। जब अकबर बादशाह तानसेन के बारे में सुना तो उसे अपने दरबार में गाने के लिए दावत दिया। अकबर ने तानसेन की पहली कॉन्सर्ट में उसे माला माल कर दिया 2 लाख रुपये से। इंडिया में अभी भी शास्त्रीय संगीत के बारे में जब जिक्र होता है तो तानसेन के नाम पहले लिया जाता है। तानसेन इंडिया की पहचान है, जैसे आगरा की ताजमहल जो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां शहंशाह अकबर का पोता क्लैन जोन था। तो इसी तरह हमने छोटे रूप में शहंशाह अकबर के बारे में बयां किया, जो 16वीं सदी के मशहूर राजा था और शहजादा सलीम के वालिद।

0: मैदान जंग से साहेब आलम का जर्रा बख्तर आया है। सलीम, मेरा सलीम,
1: मेरा सलीम।
2: सालों बाद जब सलीम जंग के मैदान से वापस आता है तो उनके लिए दावत की तैयारियां होती है और माँ अपने बेटे को इस तरह से इस्तकबाल करती है।
0: मेरा लाल, मेरा बच्चा।
3: हिंदुस्तान के अजीम शान मलिका।
0: नहीं महाबली, एक माँ, सिर्फ माँ और कुछ नहीं।
3: हमें ये मालूम नहीं था कि महारानी जोधा एक कमजोर माँ के हाथों इतनी मजबूर हो सकती है, अपने विकार को भूल सकती है।
0: उफ महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो उस माँ को तड़पने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती, जिसके बेटे का लहू इस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है।
3: उसे तड़पते दीजिए लेकिन रोने ना दीजिए। वो सब माए भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा।
2: फिल्म मुगले आजम की बात कुछ और है। पेशकश और हिदायतकार आसिफ इस फिल्म को सबसे अलग बनाने का मकसद था। एक ऐसी शानदार फिल्म जो पहले कभी नहीं बनी, एक जज्बाती रोमानी भरी कहानी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। जितना फनकार थे इस फिल्म में सब तैयार थे, मौसिकी और गाने वाले से बात हो चुकी थी, लेकिन मुगले आजम के मुहूर्त में बहुत वक्त लगा था। प्रोड्यूसर आसिफ मोहन स्टूडियो में अपना शीश महल बनवा रहा था, राजस्थान की शीश महल का नक्कल शीश महल बनाने में आसिफ को 2 साल इंतजार करना पड़ा। इस नकली शीश महल के शीशे बेल्जियम से लाया गया था। चारों तरफ हर एक के जुबान पर आसिफ के बारे में चर्चा हो रहा था कि उन्होंने एक आलीशान महल मोहन स्टूडियो में बनवा रहा है जहां फिल्म मुगले आजम का शूटिंग होगा। पर इस फिल्म के इंतजार में प्रोड्यूसर नंदलाल जसवंत लाल नेखतेंद्रिय फैतख में मुगले आजम की कहानी पर फिल्म अनारकली बनाया, जिसमें प्रदीप कुमार सलीम के किरदार अदा किया और उन दिनों की अदाकारा बीना राय थी अनारकली। फिल्म अनारकली की मौसकार है से रामचंद्र, और कैसे हम भूल सकते हैं लता मंगेशकर की अमर गीत, जैसे कि ये गीत आइए सुनें।

0: अभी आपने फिल्म अनारकली का गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि प्रोड्यूसर हिदायतकार आसिफ को मुखले आजम बनाने में कई साल लग गया था और इन सालों के दौरान प्रोड्यूसर नंदलाल जसवंतलाल सलीम और अनारकली की कहानी पर फिल्म अनारकली बनाए। ये अक्सर होता है, एक फिल्म जब मशहूर हो जाती है तो उसी तरह की कहानी दोहराने की कोशिश करते हैं फिल्म वालों ने, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन और बाद में शाहरुख खान की डॉन, दिलीप कुमार वैजयंतीमाला की देवदास और शाहरुख खान माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की फिल्म देवदास। और कितने फिल्में हैं जिसकी कहानी कई बार दोहराई गई है। खैर, हम अपनी कहानी से भटक रहे हैं। आसिफ को जब एहसास हुआ कि सलीम और अनारकली की कहानी पर फिल्म अनारकली बन रहा है तो उन्होंने घबराई नहीं। उसे यकीन था कि उनकी फिल्म मुगले आजम जब पर्दे पर दिखाएगी तो दर्शक 16वीं सदी की दौर में महसूस करेंगी। हर मौजों पर मुगले आजम अलग होगा। इसके डायलॉग, संगीत, लिबास, अदायगी, कैसे हम भूल सकते हैं फिल्म की उस मंजर को जहां शहजादा सलीम एक मूर्ति को बेनकाब करता है तो देखते ही उनके दिल से आह निकलता है, एक पल के लिए दिल थम जाता है और सोचता है काश काश इस मुजस्सम में जान आ जाती, इस खूबसूरत मूर्ति से सलीम को मोहब्बत हो जाता है। संत तराशी बिल्टहावर वक्त पर मूरत तैयार नहीं कर पाया था तो एक कनीस को मूरत बनाकर चेहरा पर नकाब डालकर दरबार में पेश करता है। अकबर को भी जब एहसास होता है कि सामने एक जीती जागती लड़की है तो उसकी खूबसूरती से निहायत मुताशर हो जाता है और नाम देता है अनारकली। सुनिए किस तरह शहंशाह अकबर उस जीती जागती मूर्ति की खूबसूरती को तारीफ करता है।
1: एक तजवीज पेश करने की इजाजत चाहती है।
2: इजाजत है?
1: अफसानों में है कि मुजस्समों की निकाब कुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी।
2: तजवीज पसंद आई शेख। अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं।
3: दिल्ली लाई हुक्म की तामीर होगी।

शहजादा सलीम सालों बाद वापस आता है, पर बदला नहीं। वो जज्बा, जो शीलापन, मौसिकी से प्यार, शहराना अंदाज में बातें करना, खूबसूरती से प्यार, हाँ, सलीम को इश्क हो जाता है। एक शहजादे को एक कनीज से मोहब्बत हो जाता है।

इस फिल्म का ना भूलने वाले उस मंजर, चांदनी रात में सलीम और अनारकली का रोमानी भरी मिलन, साथ में भरे गुलाम अली की आवाज, कितना खूबसूरती से हिदायतकार आसिफ इस मंजर को

सलीम और अनारकली की बेपनाह गहरी मोहब्बत की अंजाम क्या होता है, अगले हफ्ते की प्रोग्राम में हम बयां करेंगे।

फिल्मी दुनिया पेश था जिसमें हमने सुनहरी दौर का पेशकश और हिदायतकार के आसिफ की फिल्म मुगले आजम के बारे में बयां किया। आपने सुना कि उसे इस फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आइए सुने तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज़ों में ये जुगल गीत।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये गीत। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और एसहा बिहारी का लिखा तर्ज था। आज भी सुनहरी दौर के गाने सुनने में कितना सुकून मिलता है। आज भी इसमें वही ताजगी है, वही हरियाली है। गीत चाहे दर्द भरा हो या मोहब्बत भरी।

फिल्म जहां प्यार मिले में से ये गीत पेश था। आवाज थी सुमन कल्याणपुर की, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन, कलाम था हसरत जयपुरी का। अगला गीत पेश है, आवाज है मेहंदी हसन साहब की।

रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। फिल्म आईना का नगमा पेश था, गायिका थी नयारा नूर। गुलशन महके बरखा बरसे पतझड़ जारा कुछ भी हो, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम आशिकाना है।

अंधा मैं चांदनी कमाल का गीत पेश था। गायिका थी लता मंगेशकर, संगीत से सजाए थे संगीतकार जयदेव और संगीत रचना था शायर बालकवि बैरागी। भीगी हुई एक शाम की दहलीज पर बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है।

का माँ का नगमा पेश था मौसकार रघुनाथ सेठ की मौसीकी थी, नगमकार था शायर कैफी अजमी, गायिका थी अनुराधा पौडवाल।

स्वर की मालिका लता मंगेशकर से पेश था ये नगमा। सख्त हाथों से भी छूट जाती है उंगलियां, रिश्ते रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, उषा खन्ना ने संगीत से सवारे थे, गीतकार था शायर असद भोपाली। गुजरे है तेरी साथ जो दिन रात, अभी तक आंखों में बसे है वही लम्हात, अभी तक रहने नहीं देता मुझे तन्हा वो तसव्वुर, जिंदा है मेरे दिल में तेरी जात अभी तक, तू नक्श है दिल पर मेरे तस्वीर की सूरत, बदले ही नहीं मेरे हालात अभी तक।

छू लेने वाले नगमा पेश था स्वर की मलिका लता मंगेशकर की आवाज में। मोहब्बत, मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत मोहब्बत बांटने वालों को मिला करते हैं।

शेराना अंदाज में पेश था ये नगमा चित्रगुप्त की मौसिकी थी। नगमकार था शायर मजरू सुल्तानपुरी। आज भी इन नगमों में वही ताजगी है, वही हरियाली है। बार बार सुनो तो भी जी नहीं भरता। तो लीजिए एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहेब से अगला नगमा।

चांद कितनी दूर था। मोहम्मद रफी साहब से आपने भी ये नगमा सुना। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चराहों ने मेरी नींद उड़ा रही है।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमाती निशा।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Arre, zoen, wacht een keer. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambolet, regelitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

The most sensational and the best leader in broadcasting. You are Ujala Radio ka paighaam aap sun rahe hain. Main hoon Shahid Gulzar. Namaskar. Assalam Walekum. मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं यू आर के माध्यम से. प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना. वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आज नहीं तो कल के वास्ते आप फोन का नंबर नोट कर लेना. एम्स्टरडम में 020-409-0807. इट्स यू आर, तू जाने है तो.

Sață mundărpar. Sață mundărpar, mă te repice, pice agăi. Mix Max Songs, ap kima dhe me prasut ki jare hai, You Are ke zariye. हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज की जा रहे स्टूडियो एम्स्टर्डम से और मिले जुले संगीत में इस बार आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़.

बाप की दिन आ गए शबाब की आंचल संभालिए। जगजीत सिंह की आवाज आपने अभी सुने है उजाला रेडियो के माध्यम से। हाय बॉय गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन लोक सिलेक्शन आपके खिदमत में अर्ज है। नौजवान स्टार्स के साथ पर बेकरार है यार, बेकरार है यार, आजा आजी से होगा अब प्यार।

बेकरार बेकरार है यार, आजा आज इसे होगा अब तो प्यार। उम्र बीती पर जवान है नैना, क्या बात है आजा जी। गोल्डन ओल्ड, गोल्डन ओल्डी लोकल सिलेक्शन आपने भी सुने हैं नौजवान स्टार्स के साथ पर। बेकरार है यार आजा आज इसे होगा अब तो प्यार। रेडियो के क्षेत्र पर हर कामर काज के वास्ते फोन का नंबर है 02-409-0807। कुछ मिले जुले संगीत में ये भी अर्ज है पंकज उदास की आवाज। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे अच्छा लगता है, कुछ इस तरह से।

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: Mire jule sangeet me isbaar, suro kabaat shaam Mohammed Rafi sahab ki awaaz. फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है, सन 1966 का फिल्म, 1966 का फिल्म मोहब्बत जिंदगी है से हम आपको सुनाने वाले हैं कि तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला कि मेरे सीने में भी दिल है एक धड़कता हुआ।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने भी सुने हैं। तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला कि मेरे सीने में भी दिल है एक धड़कता हुआ। फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है। मिले जुले संगीत में भी एक और लोकल सिलेक्शन हो जाए, इस बार है वाहिद अशरफ की आवाज, खिलती नहीं कोई वफा। स्टेशन है यू आर, तू जाने है तो

सुनसान है मेरे दिल की गली, खिलती नहीं कोई वफा की कली। वाहिद अशरफ की आवाज। मिले जुले संगीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार।

वंस अगेन प्रोग्राम में पंकज उदास की आवाज। सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश का मौसम, हर मौसम है पीने का मौसम। जनता की आवाज, आप ही की आवाज, यू आर का पैगाम। एंजॉय दिस सॉन्ग।

वेरी नाइस सॉन्ग आपकी खिदमत में अर्ज की गई है कि सर्दी हो या गर्मी या बारिश का मौसम, हर मौसम है पीने का मौसम। पंकज उदास की आवाज़।

आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज आप अभी सुने हैं। उजाला रेडियो का पैगाम में कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं। द रॉकिंग एंड सेंसेशनल यू आर का पैगाम में जैसे कहा है कुछ मिले जुले संगीत अर्ज है। फोन का नंबर 02409 0807 पर आप डायल कर सकते हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते मैं हूँ शहीद गुलजार। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते जाना। हमारे बाद में भी और कौन कौन खिदमत करने वाले हैं आज रात्रि तक, स्टे ट्यून्ड।

गाना सुन, जहां तू ताके है हम भी वहां ताकीला। जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नाहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांडे ज़ादा दिन एंड ज़ोंडा 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मोइस सुन हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दिनाख में आप सुनने को जा रहे हैं नाहमा इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

एंड गर्ल गर्ल गर्ल बन गई। यो यो हो ही था यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर एंड सुखबीर इन लोगों से आप सुने एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे
1: किसी से प्यार।
0: जुबिन नौटियाल की आवाज उजाला रेडियो एंड इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा तू देख ले उजाला.nl

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

अरे कजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। लता जी एंड किशोर कुमार फिल्म अपना देश का गीत सुनने वालों, अगला गीत देखा जाए तो शैलेंद्र सिंह की आवाज में होंगे।

0: मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन जब से देखा मैंने तुझको बस शायरी आ गई। शैलेंद्र सिंह की आवाज, फिल्म बॉबी का गीत, एक बार फिर किशोर कुमार के साथ लता जी को आप सुनेंगे।
1: हाँ? क्या कहा?

मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद जी की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर और ये उजाला रेडियो है। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे अब।

अल जाए हाय रात ना जाए। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिल्म गाइड का गीत को आप सुने, मुकेश जी हिस्सा लेंगे उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश जी की आवाज और फिल्म लाल बंगला से गीत को आप सुने। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब शारदा के साथ।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag meer. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वाक्तिकर, हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, यस, फाज़ 1 इज volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तुसे तोख, हैब यार नोग गेन टिकट्स, दन इज दिट ये कांस ओम द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फाज़ 2, मोय सीज़न, इन फाज़ 2 ते स्कोरन, वाख नीट ते लांग, वांट इन द वोलगेंदे फाज़ गान द टिकट प्राइज़ ओमहोग, तू जल्दी कर मौसी, चली घूमे, चली ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 चली ब्रासा फेस्ट, बेस्टेल न्यू फिया www.brasafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

को आप सुन रहे हैं सुनने वालों, इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्द ए दिल। प्रोग्राम दर्द ए दिल में दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं, उन गीतों जिसे सुन करके दिल को शायद तसल्ली मिल जाएगी, या तो हो भी सकता है कि दिल का दो जो दर्द है और बढ़ जाएंगे।

अब दिल की तमन्ना यही है, लता जी की आवाज में आप सुने गीत। फिल्म का नाम हंसते जख्म, 1973 की फिल्म जिसमें उन दिनों काम किए प्रिया राजवंश, नवीन निश्चल और बलराज साहनी।

और दूर सवेरा मुकेश जी की आवाज। फिल्म आह से आप सुने 1953 की फिल्म 1953 की फिल्म और काम किए इस फिल्म में उन दिनों राज कपूर के साथ नरगिस। और सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ पेश है।

गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आप गीत को सुने नसीम बेगम की आवाज़ में, 1965 की फिल्म सहेली से निकाला हुआ, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों प्रदीप कुमार के साथ कल्पना जी।

हेमंत कुमार की आवाज़ और 1966 की फिल्म अनुपमा से आप सुने, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों धर्मेंद्र के साथ शर्मिला टैगोर जी।

मिलके बिछड़ गई अखियां, आमिर भाई की आवाज में आप गीत को सुने। बहुत ही पुरानी फिल्म, 1944 की फिल्म, 1944 की फिल्म, जिसमें काम किए करण दीवान और स्वर्णलता। हाँ, बहुत ही पुरानी फिल्म रतन। उजाला रेडियो है ये, फिल्म या तो कहिए प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल। पेश है अगला गीत और ये होंगे, हाँ, लता जी की आवाज में फिल्म हकीकत का गीत।

जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। फिल्म हकीकत लता जी की आवाज़ और फिल्म हकीकत 1964 की फिल्म काम किए उन दिनों, इसमें धर्मेंद्र, बलराज सानी, विजय आनंद और प्रिया राजवंश।

वो जब आए, वो जब याद आए तो बहुत याद आए। लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब से गीत आप सुने। 1963 की फिल्म पारस मनी से काम किए इस फिल्म में महिपाल और गीतांजलि। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दे दिल, दर्द भरी गीतों के साथ।

The man with the golden voice, Talat Mahmood की आवाज 1964 की फिल्म जहां अड़ा और काम की इस फिल्म में माला सिन्हा के साथ भारत भूषण एंड शशिकला जी

चमन में रह के वीराना, शमशाद बेगम की आवाज़ और फिल्म दीदार 1951 1955 के फिल्म दीदार में काम किए अशोक कुमार, दिलीप कुमार, नरगिस और निमी। अब चलिए, मोहम्मद रफ़ी साहब हिस्सा ले रहा है।

पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा माना, बड़ी भूल हुई हमसे कि हमने क्या समझा और क्या जाना। पत्थर के सनम 1967 के फिल्म में काम किए मनोज कुमार, मुमताज, वाहिदा रहमान और आवाज थी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब की। उजाला रेडियो प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ।

है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। लता जी की आवाज। फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम, 1973 में बनाई गई। निखंतिन द्रियन सैफन तक में राजकुमार, और देखा जाए तो राजकुमार के साथ विजय आनंद और प्रिया राजवंश भी इस फिल्म में काम किए हैं।

इनको चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में जानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती खंटम छंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा, जा।